0: रेडियो था संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: 99.4 रेडियो था संचार स्टूडियो टाइम
0: इट्स 6 a.m.

0: लागि सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 MHz। जलजला ट्रायल चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 7 बज्यो।
1: यस टाइम चेकका प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्राली दिलोतमा 5

नाना को बालो हरियो भयो मेरो राधा पियारी को पिपल छायाले पिपल छायाले मौरी घुम्छ रसा को निले।

एकदम को जीरो दुदम को मेथी मेरे राधा पियारी को तीनदम को सुपारी तीनदम को सुपारी हेरा ना दादी फकाउनी मलाई मेरे राधा पियारी को देवीला पुकारी देवीला पुकारी राधा पियारी को भला दिन दिन।

0: সবাটা চেতনা মনোরঞ্জন রসকলা ইউ সমাজ রেডিও চলজেলা চলজেলা চলজেলা
1: চলজেলা ট্রাইব চেক यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा दिउँसोको 4 बज्यो।
2: यस टाइम चेकका प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्राली दिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।
3: के तपाईँलाई गर्दन वा कम्मरमा नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, मुख बाङ्गिने, एलर्जी, छाला रोगका समस्या, पुराना रुगा खोकी, टन्सिलाइटिस, अनिद्रा
1: यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा

नमस्कार। लुम्बिनी प्रदेश तथा आसपासका क्षेत्रमा एफएम ब्यान्ड 96.4 मेगाहर्ज, हाम्रो वेबसाइट जलझला प्रेस .com तथा फेसबुक